0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो
2: आरुण आरुण आरुण आरुण आरुण आरुण आरुण आरुण आरुण
3: Vietnam, Judah, Capella Vaux, Meura, Rap Knowledge, The Akbar, Souls of Africa, Jungle Bit.

0: तुम ये करे वेर क्वारो
1: परेशानी हुई जो को
2: बीमार मैं पाचो
0: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो।